मेरी बड़ी आई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना गया ने मेरा सचिया बात सो कोई ना वो ना गया ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अमृत नाम निदान है मिल पीवह पाई। जैस सिमरत सुख पाई सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह नाकाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई।

सुंदरी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग।

सुहाई सर सहिरी लय पहर जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगल सुहाए सर सुबान ओ आहे बिनुता गावे हैं सरस बसंत।

त्वा प्रसाद कबित हुकमल हरि का जगत हा विभूत दार के तुआ मसान वास कर करत है हुकमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है बिंद के सधैया दाए ही जिगी बटैया देत बंदरा सदीव पाए न गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छेन कह सके तरत है भूत बन चारि छित छौ न सब दूता धारी पौन के हरि सोभ जंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजिया ते तगोवन के जैया भृग भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछ की बटैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड ज्ञानी तिनो जानी पव खानी नाहे असर प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे हूचरी गजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया के बखानी है फल के भछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदिस फिर यदिस भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि का हत जग आग के पछैया सोच गोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देते चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मच तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारे लिखी केस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीट तन गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल दे रहत है जो कि जटाधारी सती साचे बटे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे ओई करत है। चंद्रमा त शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा सेना वेद चारि सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौगरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विसन कते वेद पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कते असुनि कुमार कते अंसा अवतार कते काल बस भय है। पीर ओ पिकांबर कते गण न परत ते भूमि हित होए के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को तलत है। मान से वही बहुत लीप कस छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिजदे करे अनेक तूप ची कपट में सपोसती अनेक दारी वावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जब काटत अनेक दंड सोतो न डंडोत अस टांग अथ तीस को कहा भयो रोगी जो बेडारो रहो उर्द मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दाम ना प्रवीण एक भावना विहीन कस पावे जगदीस को शीस पट कत जाके कान में खजूरा धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सो आख को चरिय फल फूल को बचिय सदा बन को भ्रमय और दूसरो न भूख सो कहा भयो भीड़ जोग सत शीस वृक्षन सो माटी को बचिय बोल पूछ दीज जोग सो कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेट पर लोक सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठाड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पांग भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठोर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने का बहूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक

ना जत है ना जन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचन ओ गद अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बुड जड़ कंक धार डार डार फांस डक मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाई है ताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए तो जो पे पाए तो जाप देव भूत ना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाई अद अनल आकाश पंछी डोल वो करत है आग में जरत गत नान की परत कर पताल के बसी की भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो कि भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को राम से इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सोई रस करहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जान वो। देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जस गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन।

एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग दे कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप दे भूत भूत प्रकट हो ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केत गछ मछ कते उनको करत भच कते अच वच हो पच उड़ जाएंगे। केत नभ बीज अच पच को करेंगे भच के तक प्रत अच हो पचाए।

काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज जीव तेज में तेज जैसे तेज ऋण ताही ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। कूकत फिरत कित रूबत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे जो आचार पूज हारे वाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली हारे भीतर लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तप

न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं भेखं जूनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं नाव न रोगं न शोकं न मोहं न माथं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न द्वेखं न बेखं जो

चंडे ब्रह्मा ते न जाते न पाते न सत्र न मित्र सुभूते भविखे भवान अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं नरेहं न लोभं न चोभं भूतं भेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयादद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखातं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न गायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न वर्मं सदेवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एको

चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृह कहूँ देह दोखं कहूँ औषधीसो रोग के सुख सोखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाणी कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हों कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हों कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत में परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हों कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हों कहूँ राजसी हों कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ट की रिष्ट पन्नया कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ भद्र बाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान की गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वार स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हूँ कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हूँ कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुलाचारिणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजं धेरा

भूलानुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतपान। जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख। जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग व्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साथ। जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय याद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत। जय काल व्याल कट्यो नांग, छह स्वरूप अखय भंग, जय नेत नेत उचरंत भेद, जय अलख रूप कथत कतेब। जय अलख रूप असन अटूल, जय अमित तेज अक्षय अतूल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत तुरंत। तन सीत घाम बरखा सहंत, कई अगलब एक आसन बितंत, कई जतन जोग विद्या विचार, साधंत तद पावत न पार। कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत, कई उर्ध मध पावक जुलंत, कई सिमृत शास्त्र उचरंत भेद, कई गोग काव कथत कतेब। कई अग्न होत्र कई पवन हार, कई कर्त कोट मृत को आहार, कई कर्त साक पय पत्र भ

करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बड़ंत कई गर्द भांत बांधन विचार नहीं नैकता सपायत न पार। कई तीर्थ तीर्थ भरम सोभरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई गर्द वीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायत न पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र दुचरत सोकरम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जक्ष गंधर्व कान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृकर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पकड़े राधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई यगन ताप कई जपत ऊर्ध लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदप तास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप तिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं बलत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक राम एक चित्त लीन भो कुटो।

जय जम पोह जुकण जूह जुअंग भय कम पोह मेर पयाल भुवंग तप तापस सर्ब जलेर दलंगन उचरत इंद्र कुमेर बनंग अनखेद स्वरूप भेद भ्यंगन खंड अभूत छेद छ्यंगन काल पाल दयाल स्वंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रच्यंग देवा देवरं सब कीनी दीन जमीन जमा जे रच्यंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रच्यं छत्री छत्र छितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड हते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बदाव प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जच्छ गंधरव फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नर पान पाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग रंग रज अंड सेत जोत भुजंग किए देव देव सराद वितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रव जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे जंप है किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाजर था दिग पांद गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जहे अंडज सेतज जेर रंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली मन जास कियो फल फूल करी वो मेरा आकाश निवास शितंग रज रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद्र दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत अभूत अछूत मतंगन काद अभ्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुखं जे शोक न भोग न जोग जुअंग भो भंजन गंजन आदि शरंग जे वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच्छ भुजंग रचे मन माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज पृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुख तप तप कई कर्पन लो तप ताप करे नई नय कृपा निध पान पर जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रतीम भेद उचार दसार सुती जो वारस के जस के रस है ते भूर न काल फंदा फस है।

समस्त सिद्ध वृद्ध सदीव सर्वसाथ है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोक दाग दग है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात्माद जात है, न पात ज्ञान वर्ण है, अदेक सेख वेग है सदीव विश्व वर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्व वर्ण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम परम है। अद्वैख है, अभेक है, अलेखनाथ जानिए सदीव सर्व ठोर में, विशेख अन मानिए। न जंत्र में, न तंत्र में, न मंत्र बस आवई, पुराण एवं कुरान नित नित के बतावई। न कर्म में, न धर्म में, न भरम में बताइए, गंज आद देव है कहो सुख सपाइये। जिमी जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न भाड़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है, न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान प्रमाण तेज मानिए। न देह है, न गे है, न जात है, न बात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, न दोख है, न दाग है, न द्वैख है, न देह है, न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौध है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्म है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है। न नेह है, न गे है, न देह को बनाव है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाव है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाव है, न छल है, न छिद्र है।

पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपार है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न फंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न द्वी है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेख है।

बेअंत है अनंत है अनंत तेज ज्ञानी अभूम भिज है सदा छिज तेज मानी है नाध है न व्याध है अगाध रूप लेखी है दोग है अदाघ है अचे प्रताप पेखी न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आध है न गाध है न

सुरहाव। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धर्मस्तक लखिया लखास। धन धन सत संगत।

पृछत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सहल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सत पाछै बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

भई परापत मानख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कतै नकाम मल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भाव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप